इका नो तिसें यू मेरु को सोपन रो ठरी है मेरा बम सन नेट एंड रोहा गाउन रोहा क्या मुहोलो उन फुने उठी ती मिहना आयो कोई हो नो वा तो खले के मुई वना नो पाही मुसुरु खा ही खा मुलुपना खलनु मुसुरु